0: enter your own world again, or be sure to stay forever. Once they're closed, you can never go back. It's up to you to choose. Just try to listen to the elves. Remember their voice, and cherish what you've heard.
1: नमस्ते, मैं हूं उदयन फ्रॉम द बैंड कोमारोसी और आप सुन रहे हैं प्रॉक्को रेडियो, द ओनली ट्रू प्रॉग रॉक एंड इंडी स्टेशन इन मॉन्ट्रियल।